0: நல்ல ஒரு சேவையை செய்ய முடியும். நன்றி, வணக்கம்.
1: நேர்கள் இதுவரை கேட்டது நலமாய் வாழ.
2: இன்றைய நிகழ்ச்சியில் எலும்புகளின் ஆரோக்கியத்திற்கான உணவும் உடற்பயிற்சியும் குறித்து விளக்கம் அளித்தார் புதுச்சேரி இந்திரா காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு மையத்தின் எலும்பியல் துறை நிபுணர் டாக்டர் டி சிவராஜ் அவர்கள்.
3: ஹே மேன், உன்னால எங்க வீட்டுல நான் டெய்லி திட்டு வாங்கிட்டு இருக்க, தெரியுமா உனக்கு?
4: என்னடா சொல்ற?
3: நீ ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுறது இல்ல, கரண்ட் அஃபேர்ஸ் தெரிஞ்சு வச்சிருக்க, ஜிகேல டாப்ல இருக்க, எப்படி ஏதாச்சும் கிளாஸுக்கு போறியா?
4: கிளாஸ் எல்லாம் எதுவும் இல்லடா, அது மார்னிங் சீக்ரெட்ரா.
3: அது என்னடா மார்னிங் சீக்ரெட்?
5: அத நான் சொல்றேன், தினமும் காலை 7:35 இருக்க நம்ம எஃப்எம் ரெயின்போ புதுவை 102.8ல.
6: நேயர்கள், இன்னும் சில நொடிகளில் கேட்கலாம் காமன்வெல்த் போட்டிகளுக்கான அன்றாட நிலவரம்.
7: காமன்வெல்த் கேம்ஸ் அபி ஸ்காட்லேண்ட் கே கிளாஸ்கோ மே சல் ரஹே ஹே. கிளாஸ்கோ மே பலே ஹி டண்ட் ஹோ, லேகின் ஹமாரே ஏத்லீட்ஸ் ஜோஷ், ஜுனூன் ஆர் ஜஸ்பே கே சாத் பாரத் கா நாம் ரோஷன் கர்னே கே நிரந்தர் பிரயாஸ் மே லகே ஹுவே ஹே. அபி தக் கே பிரமுக் ஸ்டார்ஸ் பாரத் கி தரஃப் சே ரஹே ஹே மீராபாய் சானு ஆர் ஷர்மிலா தங்கர். மீராபாய் சானு நே மஹிலாவோ கே 48 கிலோகிராம் வெயிட் லிஃப்டிங் இவெண்ட் மே பாரத் கே லியே பஹலா கோல்ட் மெடல் ஜீதா. வஹி ஷர்மிலா தங்கர் நே மஹிலாவோ கே F57 ஷாட் புட் மே பாரத் கே லியே பாரா அத்லெட்டிக்ஸ் கா பஹலா ஐதிஹாசிக் கோல்ட் மெடல் ஜீதா.
8: ஸ்பர்தாவோ கே சட்டே தின் க்யா ஃபிர் பாரத் கே லியே கோயி ஜாது கி சடி சமக்னே வாலி தி ஆர் கௌன் ஹோனே வாலே தே வோ அத்லீட் ஜோ சமத்காரிக் பிரதர்ஷன் கர்கே திகாயே. பாரத் தோலன் மே அப தக் ஜோ பி பாரதிய லிஃப்டிங் ஹால் மே ஆயா தா உஸ்னே பதக் கா பார் தோ உடா ஹி லியா தா. छठे दिन ये सिलसिला टूट गया. भारतीय मुक्केबाजों ने अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है और अब पदक बस उनकी जद में आने ही वाले हैं. क्वार्टर फाइनल चक्र था, एक जीत यानी पदक पक्का. सिलसिले का आरंभ पहली बाउट से ही प्रीति ने कर दिखाया. एथलेटिक्स में चार भारतीय थे, 400 मीटर पुरुष में दो, ऊंची कूद में पूजा और 10,000 मीटर में गुलवीर. स्विमिंग में दो बड़े सितारे पूल में उतरे, साजन प्रकाश और श्रीहरि नटराज. लेकिन यहाँ पर मुकाबला इतना कड़ा है कि हीट्स को पार करने के बाद फाइनल में जगह बना लेना भी एक उपलब्धि बन जाता है. तो पैरा खिलाड़ी भी अपने संकल्पों को उड़ान देने में लगे हुए हैं. सारी चर्चा करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रमंडल खेल ग्लासगो 2026 के छठे दिन का लेखा जोखा. एथलेटिक्स में कल भी एक शानदार प्रदर्शन आया और इस बार ट्रैक से लॉन्ग डिस्टेंस रनर गुलवीर सिंह ने इस साल चल रहे अपने अच्छे फॉर्म को बरकरार रखा और रजत पदक हासिल किया. 10,000 मीटर की स्पर्धा में गुलवीर ने इस साल अपना सबसे अच्छा जो समय निकाला था वो था 27:24.28. इसके हिसाब से मुकाबला खासा कड़ा दिख रहा था क्योंकि फाइनल में कीनिया के ही तीन धुरंधर 27 मिनट से कम समय निकाल चुके थे. तेज बारिश के बीच ये रेस आरंभ हुई. गुलवीर धुन के पक्के निकले, बारिश की परवाह किए बिना अपना रिदम बनाए रखा और अंतिम लैप में तो शानदार प्रदर्शन किया और दूसरा स्थान प्राप्त किया 27:49.78 के साथ. स्वर्ण पदक पाया ऑस्ट्रेलिया के वाई रॉबिन्सन ने 27:48.93 के साथ और कांस्य पदक मिला आइल ऑफ मैन के डेविड मुलारके को. गुलवीर ने रवानगी से पहले ट्रेनिंग और उम्मीदों को लेकर कहा था,
9: अच्छी बेहतर करेंगे अपना जितना जिस हिसाब से ट्रेनिंग चल रही है, जिस हिसाब से प्लान है कोच का, अच्छा होगा.
8: बस ये लास्ट वाला. पुरुषों के 400 मीटर में दो भारतीय थे, उम्मीदें विशाल टीके से ज्यादा थीं और उन्होंने क्वालिफिकेशन राउंड में हीट 6 में 46.49 के साथ दूसरा स्थान पाया और क्वालिफाई कर लिया. हालांकि कुल मिलाकर 16 क्वालिफायर्स में वे 14वें स्थान पर रहे. यानी अगर पदक की उम्मीद जिंदा रखनी है तो आगे उन्हें अपना सब कुछ झोंक देना होगा. इसके पहले हीट 3 में राजेश रमेश 47.73 के साथ तीसरे स्थान पर आए और ओवरऑल 25वें स्थान पर रहे, क्वालिफाई नहीं कर सके. महिलाओं की ऊंची कूद में पूजा सिंह से बहुत उम्मीदें थी कि वो पुरुषों की स्पर्धा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी. उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है 1.93 मीटर की ऊंचाई लांघना. पूजा ने यहां पर शुरुआत की 1.72 मीटर से, उसके बाद 1.77 मीटर की ऊंचाई पार की. इसके बाद बहुत तेज बारिश आई और करीब 1.5 घंटे के लिए स्पर्धा को रोक दिया गया. और लगता है पूजा की रिदम भी शायद यहीं पर टूट

0: गई। जब स्पर्धा आरंभ हुई 1.82 मीटर की ऊंचाई फांदने की कोशिश पूजा ने की लगातार, लेकिन वो इसको पार नहीं कर पाई। पूजा की कूद की ऊंचाई बस यहीं थम गई और साथ ही पदक की उम्मीद भी जाती रही।
1: A ray of sunshine for all the fans of weightlifting out there, and definitely a moment of pride for all Indians to smile as Harjinder Kaur won the silver medal in the women's 69 kilogram category finals, thereby taking the total medal tally to 7 in weightlifting. Harjinder won the silver medal with a total of 227 kilograms, which included 101 kilogram in snatch and 126 kilogram in clean and jerk. She put a dominant display in the snatch category of the women's 69 kilogram final. She lifted 96 kilogram, 99 kilogram and 101 kilogram in her 3 attempts in snatch, and thereby her best effort in snatch was recorded at 101 kilogram. Thereby her total went on to become 227 kilogram, which bought India the 7th medal in weightlifting, and Harjinder contributed by bringing in the silver in the women's 69 kilogram category.
2: 1 year से सर मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए रिजल्ट है उसका ही। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, डाउन नहीं होने दिया कभी, हर टाइम मेरा साथ दिया है।
1: Well, heartbreak for all the lovers of weightlifting. India's Nirupama Devi Serum had raced her opening attempt in the clean and jerk to 123 kilogram in the women's 63 kilogram final after initially registering 115 kilogram. But she failed to complete all her 3 attempts in clean and jerk at 123 kilogram in the women's 63 kilogram final. With no successful lift recorded in the clean and jerk round, Nirupama was out of medal contention and registered a did not finish in the women's 63 kilogram final.
0: कल भारत के 5 मुक्केबाज रिंग में उतरे अपने ग्लव्स का दम आजमाने के लिए। पांचों बड़ी मेहनत कर राउंड ऑफ 8 में पहुंचे थे और अब पदक की खुशबू उन्हें बस आने ही लगी थी। एक जीत और पदक पक्का हो जाएगा, लेकिन यही लक्ष्य नहीं है, मन में तो गोल्ड मेडल बसता है। कल शुरुआत की हरियाणा की उर्वर जमीन से निकली नई पौध की प्रीति पवार ने बचपन में लड़कों के साथ मुक्केबाजी की प्रैक्टिस और पैरी करते करते 22 साल की ये लड़की विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लाई है। कल उसके मुकाबले थी रेड कॉर्नर में नॉर्दर्न आयरलैंड की निकोल क्लाइड। प्रीति की चपलता, मौके चुरा कर धड़ाधड़ मुक्कों की झड़ी लगा देना, इसका निकोल के पास कोई जवाब ही नहीं था। तीनों राउंड सर्वाइव कर लेना ही निकोल की सबसे बड़ी उपलब्धि।
3: We have a unanimous decision. The winner in the blue corner from India, Preeti Preeti.
4: It's really nice to have a strong team because it does matter from which country you belong. So, real nice.
0: अब सेमीफाइनल में प्रीति का मुकाबला जिम्बाब्वे की कैथरीन वापे से होगा 31 जुलाई को। बस 2 दिन बाद अपना 20वां जन्मदिन मनाने जा रही प्रिया घंघास भी बड़ा पीछे क्यों रहती। स्कॉटलैंड की निया मिशेल को हराकर उन्होंने खुद के लिए ही तोहफा पक्का कर लिया। हालांकि ये बाउट जीतने में उनको बहुत पसीना बहाना पड़ा। अब तय होना था 3rd राउंड में कि किसको मिलनी है जीत, और ये पूरी तरह प्रिया का रहा। एक के बाद एक उन्होंने जब 3 स्ट्रेट पंच मिशेल के चेहरे पर जड़ दिए, तभी सबको लग गया कि अब तो ये प्रिया पंघास ही जाने वाली हैं अगले राउंड में। स्प्लिट डिसीजन आया और निर्णायकों ने ये बाउट प्रिया के नाम कर दी।
3: द विनर इन द रेड कॉर्नर
0: अब पिछले हंगचाओ एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता परवीन हुडा पर जिम्मेदारी थी मुक्केबाजों के इस शानदार प्रदर्शन को आगे बढ़ाने की। सामने रेड कॉर्नर में थी इंग्लैंड की शाचा हिकी। सारा स्थानीय समर्थन हिकी के साथ ही था। कांटे की लड़ाई हुई, लंबी छहरी परवीन ने कोशिश तो बहुत की, मुकाबले में अपने क्षण भी उन्होंने कुछ कमाए, लेकिन अंततः रेफरीज का निर्णय 2-3 से उनके विरुद्ध गया और साथ ही पदक की उम्मीद भी चकनाचूर हो गई। नाम है जदुमणि सिंह, आज वो भारतीय सितारा है, उसके मुक्कों से विपक्षी थर्रा रहे हैं। कल क्वार्टर फाइनल में जाम्बिया के मांगो मौले उनके खिलाफ थे। पंचेस, अपरकट्स, जैब्स और साथ में पूरी होशियारी से गार्ड बनाए रखा जदुमणि ने, और इसका परिणाम ये हुआ एक और सर्वसम्मति से मिली हुई 5-0 की विजय। 6th दिन की अंतिम बाउट में भी एक भारतीय था, 90 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल पोखरिया रेड कॉर्नर में। उनके सामने थे स्थानीय बॉक्सर रॉबर्ट मैकलाउल्टी। कपिल ने कोशिशें तो बहुत की लेकिन रॉबर्ट उनसे हर क्षेत्र में बेहतर साबित हुए। 5 में से 3 मुक्केबाजों